0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर।

0: श्रोताओं, मानव के रूप में हमारी जिंदगी में बहुधा ऐसा होता है कि जब हम मुश्किलों और कठिनाइयों के दौर से होकर गुजर रहे होते जो हमारे लिए अंतहीन लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन को मुसीबतों और बुरी चीज़ों से भर दिया है। हमारे जहन में ईश्वर के प्रति एक तरह से संदेह की भावना उत्पन्न होती है। शायद हम उनके अस्तित्व पर भी अपने को भ्रमित होता पाते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन की परेशानियों के कारण हम ईश्वर से खफा, उन्हें भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते हैं। यह हमारे लिए मानवीय स्वभाव का हाल व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने लिए ईश्वर से सदैव अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं। निसंदेह ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और अपनों के लिए जीवन की खुशी और जीवन की समृद्धि। श्रोताओं, वर्ष के 16वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें इस सच्चाई से वाकिफ कराता है कि ईश्वर सदैव अपने में भले हैं। अपनी प्रकृति में वे सदैव हमारी भलाई करते हैं, चाहे हम अपने में कितने भी कृतघ्न और बुराइयों से भरे हुए क्यों ना हों। वे हमेशा हमारे लिए अपनी आशीष और कृपा को बिना भेदभाव किए बरसाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि ईश्वर के प्रति हमारे मनोभाव कैसे हैं।
1: यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बो कर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
0: श्रोताओं, सुसमाचार की सुमधुर वचन हमें अपने जीवन रूपी हृदय के खेतों में अच्छी फसलों को विकसित करने हेतु मदद करे, जिससे हम ईश्वर के बखार में अपने को जमा करने के योग्य अनाज बन सकें। ईश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण मुफ्त में जीवन और असंख्य कृपाओं से विभूषित किया है, जिसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ बने रह सकते हैं। लेकिन अपने स्वच्छंद जीवन, स्वार्थ और घमंड के कारण हम उन्हें चुनौती देते और कई बार उनकी बुराई करते हुए भला बुरा तक कह देते हैं। वे हमें पश्चाताप का अवसर प्रदान करते और अपनी ओर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे लिए उनके पुत्र में प्रकट की गई दयालुता को प्रकट करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर की कोमलता और दयालुता को प्रकट करता है। प्रेरित संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन आत्मा हृदय की अस्पष्ट आहों को जानता और उन्हें ईश्वर के सामने हमारे निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों के सारे रहस्यों को जानता है। अतः यह हमें अपने को ईश्वर के सामने खुले रूप में प्रस्तुत करने का निमंत्रण देता है। उन्होंने हमारे जीवन रूपी खेत में सदैव अच्छे बीजों को बोया है। वे हमें सदैव अच्छी और भली चीजों की शिक्षा देते हैं। इस भांति अपने जीवन की बुरी चीजों और घटनाओं के लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर की ओर से ये चीजें हमारे लिए आती हैं। इसका साक्ष्य हमारे लिए आज का सुसमाचार प्रस्तुत करता है। ईश्वर ने सृष्टि के शुरू से ही सारी चीजों को अच्छा बनाया। उन्होंने मानवता में अच्छे बीज बोए, लेकिन शत्रु ने आकर मानव के हृदय में लोभ, लालच, घमंड और स्वार्थ के बुरे बीजों को बो दिया। आज भी अच्छी चीजों के मध्य हम बहुत सारे बुरे बीज पौधों को पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने सेवकों को उखाड़ने से मना करते हैं। इसके विपरीत वे उन्हें एक साथ बढ़ने देने की बात कहते हैं। वे कठिनी के दिन बुरे बीजों को अलग करने की बात कहते हैं। श्रोताओं, यह हमारे लिए ईश्वर के प्रेम, उदारता और स्वतंत्रता के भाव को व्यक्त करता है। ईश्वर हमें इस जीवन में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हमें संसार में व्याप्त बुराइयों के बावजूद वे सारी चीजों को एक साथ बढ़ने देते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं कि ईश्वर अपने सृष्टि में व्याप्त बुराइयों के प्रति सचेत या चिंतित नहीं है। वे निश्चित रूप में सारी चीजों की चिंता करते हैं और इसी कारण अपनी संवेदना में वे जंगली पौधों को उखाड़ने से मना करते हैं, जिससे अच्छे पौधों को हानि ना पहुंचे। यह हमारे लिए ईश्वर के धैर्य को दिखलाता है कि वे कटनी तक हम सबों को समय प्रदान करते हैं कि हम अच्छाइयों के मध्य रहते हुए उन्हें देखकर बढ़ें और अपने में परिवर्तन लाएं। ईश्वर अपनी सर्व शक्तिमता में बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे हृदय से दयालु, कोमल, उदार और स्वतंत्र हैं। श्रोताओं, आज ईश्वर हमें हृदय को खोलने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम उनके द्वारा अपने जीवन में बोए गए बीजों को देख सकें। हम अपनी कमजोरियों और खामियों को खुले हृदय से उनके पास ला सकें, जिससे वे उन्हें भी अच्छाई में परिणत करें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन की सारी चीजों में अपने बेटे के अच्छे कार्यों को पहचानने में हमारी मदद करें।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। गजा के निवासियों को अभी भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्राधिधर्मदक्ष के विकट जनरल धर्मदक्ष विलियम शमाली ने गजा के लोगों के सामने मौजूद गहरे मानवीय संकट के बारे बताया, जहां हजारों लोग खंडहरों के बीच टेंट में रह रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से गजा 10 अक्टूबर 2025 को लागू युद्ध विराम के तहत सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ सैद्धांतिक है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइली सैन्य हमले लगातार जारी हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्राधिधर्मदक्ष के विकट जनरल बिशप विलियम शमाली ने इस नाटक की सच्चाई पर बात की और बताया कि इस दौरान अखबारों के पहले पन्नों और टेलीविजन स्क्रीन से दूर गजा की दुखद घटना वैसे ही है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से 9 महीनों में 265 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है और जुलाई की शुरुआत में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया है। गजा में फिलिस्तीनियों के दैनिक जीवन के बारे बताते हुए बिशप शोमाली ने कहा, गजा में लोग अब सिर्फ 47% इलाके तक ही सीमित हैं, क्योंकि इसराइलियों ने बाकी 53% पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। 80% बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं, जिनमें न सिर्फ इमारतें बल्कि जलापूर्ति एवं विद्युत प्रणाली भी शामिल हैं। कई स्कूल एवं विश्वविद्यालय अब नहीं हैं। हजारों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के बारे बताते हुए कहा, जब हम मानवीय सहायता की बात करते हैं तो हमारा मतलब भोजन, दवाइयां और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भोजन और बाकी सभी चीजों में अंतर करता हूँ। उदाहरण के लिए कुछ दवाइयाँ गजा में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सभी आवश्यक दवाइयाँ नहीं और केवल सीमित मात्रा में। पिछले कुछ महीनों से गजा में प्रवेश करने वाला भोजन व्यापारियों द्वारा इसराइल से आयात किया जा रहा है, फिर इसे गजा के अंदर बेचा जाता है। जून में गजा का दौरा करने वाले प्राधिधर्मदक्ष पित्सा बाला ने पाया कि क्रिसमस से ठीक पहले उनकी पहली यात्रा के दौरान बाजार में आपूर्ति बेहतर थी। धर्मदक्ष ने कहा, मैं उस समय उनके साथ था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुकानों में अभी भी बहुत कम सामान थे। जब मैं दुकानें कहता हूँ तो मेरा मतलब एक दूसरे के बगल में स्थापित एक या दो तंबू से है, बस इतना ही। ये सुपरमार्केट नहीं है, व्यापारी इन तंबुओं को चलाते हैं और खाद्य सामग्री बेचते हैं। हम जानते हैं कि गजा के कई लोगों के पास अब नौकरी नहीं रही, वे खाना कैसे खरीद रहे हैं। इसके जवाब में धर्मदर्श ने कहा, बहुत से लोग जो नौकरी करते थे और वेतन पाते थे, खासकर जो फिलिस्तीनी सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें वेतन मिल रही है। स्कूलों में टीचर और अलग अलग सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को अभी भी वेतन मिलते हैं। हमारे अपने शिक्षकों को भी वेतन मिल रही है, हालांकि अब हमें बाकी सभी की पैसे देकर मदद करनी होगी। पहले हमने खाना बांटकर मदद की, अब हम लोगों को पैसे देकर मदद कर सकते हैं ताकि वे खुद खाना खरीद सकें। हम गजा के लैटिन पल्ली परिसर में रहने वाले अपनी पल्ली के लोगों के लिए भी यही कर रहे हैं। अमेरिका शांति योजना के अनुसार अब हमें दूसरे चरण में होना चाहिए, जिसमें हमास का आसानीकरण, पुनर्निर्माण शुरू करना और पुनर्निर्माण फंड जारी करना शामिल है। दूसरा चरण कहाँ है? इसके जवाब में धर्मदक्ष ने कहा, पुनर्निर्माण आसानीकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आसानीकरण या पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। गजा के निवासियों द्वारा आबाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर हमास का ही नियंत्रण है, इसलिए पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो सकता। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में बच्चों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे अपना दिन लकड़ी, कीले और ऐसी चीजें इकट्ठा करने में बिताते हैं जिससे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या बेचा जा सके। लेकिन अगले सितंबर से हम पौत्र परिवार पल्ले में अपना स्कूल फिर से खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम 1000 बच्चों को स्कूल में दाखिला दे सकेंगे। इस तरह वे अब सड़कों पर बेकार में अपना दिन नहीं बिताएंगे।
उनके लिए फिर से सीखना शुरू करना जरूरी है। धीरे धीरे वे युद्ध के सदमे और आघात से उभरेंगे। गजा में पौत्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित ने 17 जुलाई 2025 को हुए हमले को याद किया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, और रविवार को एक विशेष समारोह मनाने की घोषणा की। इस बीच गजापट्टी में मानवीय संकट खत्म नहीं हुई है। इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं और अंदर आवागमन बहुत मुश्किल है। गजा शहर में पौत्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने बताया कि खान यूनिस के पश्चिम में एक इलाके में ड्रोन ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। गजा शहर के समुद्र तटों पर हटाए गए टेंट पर छापे मारे और शहर के जैतून एवं तूफा इलाकों में गोलीबारी हुई। युद्ध विराम अभी भी लागू होने के बावजूद गुरुवार 16 जुलाई को गजा में इसराइली सेना के द्वारा 5 लोगों की मौत हो गई। इसलिए गजा में ना तो गोलीबारी रुक रही है और ना ही मानवीय संकट समाप्त हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले 17 जुलाई 2025 को लातिनी पल्ली में इसराइली सेना के हमले हुए थे, जिसने कलीसिया और पूरी दुनिया को हिला दिया था। फादर गैब्रियल ने हमले के 3 दिन बाद 20 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14 के शब्दों को याद किया, जिन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया था, पीड़ितों को याद किया था और शांति एवं मानवीय कानून के सम्मान के लिए आवश्यक अपील की थी। इस बीच रहने के हालात अत्यंत मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को मलबे में बदल चुकी जमीन पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप अभी बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर।

श्रोताओं, मानव के रूप में हमारी जिंदगी में बहुधा ऐसा होता है कि जब हम मुश्किलों और कठिनाइयों के दौर से होकर गुजर रहे होते जो हमारे लिए अंतहीन लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे जीवन को मुसीबतों और बुरी चीज़ों से भर दिया है। हमारे जहन में ईश्वर के प्रति एक तरह से संदेह की भावना उत्पन्न होती है। शायद हम उनके अस्तित्व पर भी अपने को भ्रमित होता पाते हैं। इतना ही नहीं, अपने जीवन की परेशानियों के कारण हम ईश्वर से खफा, उन्हें भला बुरा कहने से भी नहीं चूकते हैं। यह हमारे लिए मानवीय स्वभाव का हाल व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने लिए ईश्वर से सदैव अच्छी चीज़ों की कामना करते हैं। निसंदेह ही अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और अपनों के लिए जीवन की खुशी और जीवन की समृद्धि। श्रोताओं, वर्ष के 16वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें इस सच्चाई से वाकिफ कराता है कि ईश्वर सदैव अपने में भले हैं।

0: अपनी प्रकृति में वे सदैव हमारी भलाई करते हैं, चाहे हम अपने में कितने भी कृतघ्न और बुराइयों से भरे हुए क्यों ना हों। वे हमेशा हमारे लिए अपनी आशीष और कृपा को बिना भेदभाव किए बरसाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि ईश्वर के प्रति हमारे मनोभाव कैसे हैं।
1: यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बाली लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में लूनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह जो सब बीजों से छोटा है परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे। जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन रूपी हृदय के खेतों में अच्छी फसलों को विकसित करने हेतु मदद करे, जिससे हम ईश्वर के बखार में अपने को जमा करने के योग्य अनाज बन सकें। ईश्वर ने हमें अपने प्रेम के कारण मुफ्त में जीवन और असंख्य कृपाओं से विभूषित किया है, जिसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ बने रह सकते हैं। लेकिन अपने स्वच्छंद जीवन, स्वार्थ और घमंड के कारण हम उन्हें चुनौती देते और कई बार उनकी बुराई करते हुए भला बुरा तक कह देते हैं। वे हमें पश्चाताप का अवसर प्रदान करते और अपनी ओर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं, जो हमारे लिए उनके पुत्र में प्रकट की गई दयालुता को प्रकट करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर की कोमलता और दयालुता को प्रकट करता है। प्रेरित संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन आत्मा हृदय की अस्पष्ट आहों को जानता और उन्हें ईश्वर के सामने हमारे निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है। क्योंकि ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों के सारे रहस्यों को जानता है। अतः यह हमें अपने को ईश्वर के सामने खुले रूप में प्रस्तुत करने का निमंत्रण देता है। उन्होंने हमारे जीवन रूपी खेत में सदैव अच्छे बीजों को बोया है। वे हमें सदैव अच्छी और भली चीजों की शिक्षा देते हैं। इस भांति अपने जीवन की बुरी चीजों और घटनाओं के लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर की ओर से ये चीजें हमारे लिए आती हैं। इसका साक्ष्य हमारे लिए आज का सुसमाचार प्रस्तुत करता है। ईश्वर ने सृष्टि के शुरू से ही सारी चीजों को अच्छा बनाया। उन्होंने मानवता में अच्छे बीज बोए, लेकिन शत्रु ने आकर मानव के हृदय में लोभ, लालच, घमंड और स्वार्थ के बुरे बीजों को बो दिया। आज भी अच्छी चीजों के मध्य हम बहुत सारे बुरे बीज पौधों को पाते हैं, जिन्हें ईश्वर अपने सेवकों को उखाड़ने से मना करते हैं। इसके विपरीत वे उन्हें एक साथ बढ़ने देने की बात कहते हैं। वे कठिनी के दिन बुरे बीजों को अलग करने की बात कहते हैं। श्रोताओ, यह हमारे लिए ईश्वर के प्रेम, उदारता और स्वतंत्रता के भाव को व्यक्त करता है। ईश्वर हमें इस जीवन में स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हमें संसार में व्याप्त बुराइयों के बावजूद वे सारी चीजों को एक साथ बढ़ने देते हैं। इसका अर्थ हमारे लिए यह नहीं कि ईश्वर अपने सृष्टि में व्याप्त बुराइयों के प्रति सचेत या चिंतित नहीं है। वे निश्चित रूप में सारी चीजों की चिंता करते हैं और इसी कारण अपनी संवेदना में वे जंगली पौधों को उखाड़ने से मना करते हैं, जिससे अच्छे पौधों को हानि ना पहुंचे। यह हमारे लिए ईश्वर के धैर्य को दिखलाता है कि वे कटनी तक हम सबों को समय प्रदान करते हैं कि हम अच्छाइयों के मध्य रहते हुए उन्हें देखकर बढ़ें और अपने में परिवर्तन लाएं। ईश्वर अपनी सर्वशक्तिमता में बुराइयों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे हृदय से दयालु, कोमल, उदार और स्वतंत्र हैं। श्रोताओ, आज ईश्वर हमें हृदय को खोलने के लिए बुलाते हैं, जिससे हम उनके द्वारा अपने जीवन में बोए गए बीजों को देख सकें। हम अपनी कमजोरियों और खामियों को खुले हृदय से उनके पास ला सकें, जिससे वे उन्हें भी अच्छाई में परिणत करें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन की सारी चीजों में अपने बेटे के अच्छे कार्यों को पहचानने में हमारी मदद करें।

आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। गजा के निवासियों को अभी भी बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैटिका न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्रतिधर्मदक्ष के विकट जनरल धर्मदक्ष विलियम शोमाली ने गजा के लोगों के सामने मौजूद गहरे मानवीय संकट के बारे बताया, जहां हजारों लोग खंडहरों के बीच टेंट में रह रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से गजा 10 अक्टूबर 2025 को लागू युद्ध विराम के तहत सुरक्षित है, लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ सैद्धांतिक है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइली सैन्य हमले लगातार जारी हैं। वैटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में यरूशलेम के लातिनी प्रतिधर्मदक्ष के विकट जनरल बिशप विलियम शोमाली ने इस नाटक की सच्चाई पर बात की और बताया कि इस दौरान अखबारों के पहले पन्नों और टेलीविज़न स्क्रीन से दूर गजा की दुखद घटना वैसे ही है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से 9 महीनों में 265 बच्चों समेत 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को भरोसेमंद माना है और जुलाई की शुरुआत में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया है। गजा में फिलिस्तीनियों के दैनिक जीवन के बारे बताते हुए बिशप शोमाली ने कहा, गजा में लोग अब सिर्फ 47% इलाके तक ही सीमित हैं, क्योंकि इसराइलियों ने बाकी 53% पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। 80% बुनियादी ढांचे तबाह हो गए हैं, जिनमें न सिर्फ इमारतें बल्कि जलापूर्ति एवं विद्युत प्रणाली भी शामिल हैं। कई स्कूल एवं विश्वविद्यालय अब नहीं हैं। हजारों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के बारे बताते हुए कहा, जब हम मानवीय सहायता की बात करते हैं तो हमारा मतलब भोजन, दवाइयां और जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भोजन और बाकी सभी चीज़ों में अंतर करता हूँ। उदाहरण के लिए कुछ दवाइयाँ गजा में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सभी आवश्यक दवाइयाँ नहीं और केवल सीमित मात्रा में। पिछले कुछ महीनों से गजा में प्रवेश करने वाला भोजन व्यापारियों द्वारा इसराइल से आयात किया जा रहा है, फिर इसे गजा के अंदर बेचा जाता है। जून में गजा का दौरा करने वाले प्राधिधर्मदक्ष पित्साबाला ने पाया कि क्रिसमस से ठीक पहले उनकी पहली यात्रा के दौरान बाजार में आपूर्ति बेहतर थी। धर्मदक्ष ने कहा, मैं उस समय उनके साथ था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुकानों में अभी भी बहुत कम सामान थे। जब मैं दुकानें कहता हूँ तो मेरा मतलब एक दूसरे के बगल में स्थापित एक या दो तंबू से है, बस इतना ही। ये सुपरमार्केट नहीं है, व्यापारी इन तंबुओं को चलाते हैं और खाद्य सामग्री बेचते हैं। हम जानते हैं कि गजा के कई लोगों के पास अब नौकरी नहीं रही, वे खाना कैसे खरीद रहे हैं। इसके जवाब में धर्मदर्श ने कहा, बहुत से लोग जो नौकरी करते थे और वेतन पाते थे, खासकर जो फिलिस्तीनी सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें वेतन मिल रही है। स्कूलों में टीचर और अलग अलग सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को अभी भी वेतन मिलते हैं। हमारे अपने शिक्षकों को भी वेतन मिल रही है, हालांकि अब हमें बाकी सभी की पैसे देकर मदद करनी होगी। पहले हमने खाना बांटकर मदद की, अब हम लोगों को पैसे देकर मदद कर सकते हैं ताकि वे खुद खाना खरीद सकें। हम गजा के लैटिन पल्ली परिसर में रहने वाले अपनी पल्ली के लोगों के लिए भी यही कर रहे हैं। अमेरिका शांति योजना के अनुसार अब हमें दूसरे चरण में होना चाहिए, जिसमें हमास का आसानीकरण, पुनर्निर्माण शुरू करना और पुनर्निर्माण फंड जारी करना शामिल है। दूसरा चरण कहाँ है? इसके जवाब में धर्मदक्ष ने कहा, पुनर्निर्माण आसानीकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन आसानीकरण या पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है। हमास अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। गजा के निवासियों द्वारा आबाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर हमास का ही नियंत्रण है, इसलिए पुनर्निर्माण शुरू नहीं हो सकता। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में बच्चों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वे अपना दिन लकड़ी, कीले और ऐसी चीज़ें इकट्ठा करने में बिताते हैं जिससे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या बेचा जा सके। लेकिन अगले सितंबर से हम पौत्र परिवार पल्ले में अपना स्कूल फिर से खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम 1000 बच्चों को स्कूल में दाखिला दे सकेंगे। इस तरह वे अब सड़कों पर बेकार में अपना दिन नहीं बिताएंगे। उनके लिए फिर से सीखना शुरू करना जरूरी है।
धीरे धीरे वे युद्ध के सदमे और आघात से उभरेंगे। गजा में पौत्र परिवार पल्ली के पल्ली पुरोहित ने 17 जुलाई 2025 को हुए हमले को याद किया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और रविवार को एक विशेष समारोह मनाने की घोषणा की। इस बीच गजापट्टी में मानवीय संकट खत्म नहीं हुई है। इमारतें और सड़कें तबाह हो गई हैं और अंदर आवागमन बहुत मुश्किल है। गजा शहर में पौत्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली ने बताया कि खान यूनिस के पश्चिम में एक इलाके में ड्रोन ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। गजा शहर के समुद्र तटों पर हटाए गए टेंट पर छापे मारे और शहर के जैतून एवं तूफा इलाकों में गोलीबारी हुई। युद्ध विराम अभी भी लागू होने के बावजूद गुरुवार 16 जुलाई को गजा में इसराइली सेना के द्वारा 5 लोगों की मौत हो गई। इसलिए गजा में ना तो गोलीबारी रुक रही है और ना ही मानवीय संकट समाप्त हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले 17 जुलाई 2025 को लातिनी पल्ली में इसराइली सेना के हमले हुए थे, जिसने कलीसिया और पूरी दुनिया को हिला दिया था। फादर गैब्रियल ने हमले के 3 दिन बाद 20 जुलाई को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें के शब्दों को याद किया, जिन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया था, पीड़ितों को याद किया था और शांति एवं मानवीय कानून के सम्मान के लिए आवश्यक अपील की थी। इस बीच रहने के हालात अत्यंत मुश्किल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को मलबे में बदल चुकी जमीन पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके अलावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हस्तक्षेप अभी बहुत दूर की बात है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह,
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: मन
1: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे।
0: मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
2: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शहीद सैनिक के नाम के पीछे सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि उनके जीवन, विश्वास, परिवार और प्यार की कहानी भी है जो हमेशा रह जाती है। एक मानवता की कहानी, एक साहस एवं आशा की कहानी। यह यूक्रेनी सैनिक रोमन कोमलिको की मां विक्टोरिया कोमलिको की गवाही है। रोमन कोमलिको 16 मार्च 2022 को मारियोपोल की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जब रोमन की मौत हुई तो वह सिर्फ 20 साल का था। 20 साल की उम्र कम लगती है लेकिन एक जागरूक इंसान बनने, विकसित होने और जीवन को गहराई से समझने के लिए उम्र सबसे जरूरी चीज नहीं होती। आप 20 साल की उम्र में भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व इंसान बन सकते हैं। सिद्धांत और विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब रोमन 2 साल का था तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ कमरे में खेल रहा था। माँ किचन गए, रास्ते में शीशे पर खुद को देखा और सोचा, जब मेरा बेटा 20 साल का होगा तो मैं कैसी होंगी? अगर तब उससे पूरी सच्चाई मालूम होती कि क्या होने वाला है तो उसका बुरा हाल होता। लेकिन आज वह अपने बेटे को धन्यवाद देती है जिसने उसे सिखाया कि इज्जत, सम्मान, सिद्धांत और विश्वास क्या होते हैं। ये वे चीजें हैं जो हमें असली इंसान बनाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ मैं में बंद नहीं है।

कि माँ यही सही है। हीरो की माँ हर सैनिक की माँ होती है। उनके कारनामे को जानकर और उनकी याद को संभालकर वह समझती है कि वह हर योद्धा की माँ है। विक्टोरिया अपने बेटे के बारे बताते हुए कहती हैं, सैनिक की सेवा में आने से पहले मेरे बेटे को इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। उसे दुनिया के इतिहास और यूक्रेन के इतिहास दोनों में बहुत रुचि थी। वह बहुत चिंतन करता था। नवीं क्लास में उसने मुझसे कहा कि वह कॉलेज जाएगा, लेकिन पहले वह अपने देश की रक्षा करेगा। उसने इसके लिए खुद को आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से तैयार किया। वह अक्सर कहा करता था, माँ हमारे देश में युद्ध जारी है, पर लोग इतने चैन से क्यों रहते हैं। उसे इस बात से दुख होता था कि 2014 से चल रहा युद्ध कई लोगों के लिए आम बात हो गई थी। 11वीं क्लास के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सैनिक दल अजोब ब्रिगेड के लिए चयन में भाग लिया। विक्टोरिया मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि वह पास ना हो। वास्तव में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जंग के बीच हो। 20 उम्मीदवारों से सिर्फ 2 ही टेस्ट पास कर पाए। गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल टेस्ट के बाद उसे तुरंत मरियोपोल में सेवा के लिए भेज दिया गया। उस समय मरियोपोल में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कभी कभी वह एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता। एक बार जब उसकी माँ बहुत घबरा गई तो उसने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर हमले के लगभग एक महीने पहले वह डोनवास जहाज पर था और टोही मिशन में शामिल था। जब उसे अजोब ब्रिगेड के लिए चुना गया तो घर में इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसके लिए एक माँ के रूप में सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका बेटा जिंदा रहे, खुश रहे और उसके नज़दीक रहे। लेकिन रोमन ने कहा कि सैनिक में भर्ती होना उसकी मर्जी है और यह उसके लिए बहुत जरूरी है। माँ ने भी अपनी आवाज़ ऊंची की। इस पर रोमन ने माँ की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी माँ हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी मर्जी कैसे नहीं समझ सकती। और विक्टोरिया को उसकी बात मानने पड़ी। जब वह मरियोपोल में सेवा करने गया तो माँ उदास रहने लगी। वह लगातार चिंता करती थी और जब 2022 में हमला शुरू हुआ तो वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पांव छीन लिए गए हों। लेकिन रोमन ने हौसला देते हुए कहा, माँ हमारा समय आ गया है। बृहद स्तर पर हमला होने से पहले उससे नए साल की छुट्टियों में जाना था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। पर वह बिना इजाज़त लिए 21 घंटे गाड़ी चलाकर घर आया और अपनी माँ एवं बहन से आखिरी बार मुलाकात की। घर में रहते समय जब वह एक दोस्त के साथ बाहर जाने वाला था तभी उसकी नानी आई। नानी ने उसे देखा और कहा, रोमचिक तुम ठीक वहीं हो जहाँ मौत का खतरा है। तब वह अपनी माँ के पास आया और बोला, तुम हीरो की माँ बनोगी। और जब वह वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो उसने कहा, माँ तुम समझती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। मरियोपोल के उस भयंकर सड़क युद्ध के दौरान रोमन शहीद हो गया। माँ को इसकी खबर मिली और वह उसके शव को 7 महीने तक ढूंढती रही। रूसी सैनिकों ने मरियोपोल से मरे लोगों के शव को वापस नहीं किया था। जब जून में वे वापस चले गए तब उनके बेटे का शव मिला। उसने उसे एक योद्धा की तरह दफनाया। बेटे से नहीं रोने का वादा किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माँ रोए। जब हम ऐसे लोगों के मिशन के बारे में बात करते हैं तो हम हथियारों या ताकत के बारे बात नहीं करते। सबसे ज़रूरी चीज़ है सम्मान, इज्जत और अपने अधिकारों और अपने ज़मीन की रक्षा करने की क्षमता। माँ कहती हैं, मेरा बेटा दूसरों का मुल्क नहीं गया और किसी से कुछ नहीं लिया, उसने अपने लोगों का बचाव किया। लड़ाई के दौरान जब मरियोपोल को समुद्र से, आकाश से और तोपों से तबाह कर दिया गया तब इस पूरे समय में वह सिर्फ 2 बार बात कर पाई। जब उसने फ़ोन किया माँ चिल्लाई, रोमचिक रोमचिक, और उसने जवाब दिया, माँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मुझे होना चाहिए। लेकिन माँ प्लीज़ उन लोगों की मदद करना जो मरियोपोल से लौट रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वे यहाँ किस दौर से गुजर रहे हैं। रोमन को आम लोगों से हमदर्दी थी।
मारियोपोल के लोग अपने परिवारों के साथ 50 से 60 दिनों तक उस नरक से बचे रहे। उन्होंने वह लाइन पार कर ली जिसके आगे

0: मौत और तकलीफें जरूर हैं, लेकिन वे असली इंसान बने रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, हमदर्दी रखी और एक दूसरे का ख्याल रखा। ये ही वे चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। इस तरह विक्टोरिया जानती हैं कि आत्मा की ताकत जख्मों का ना होना नहीं है, बल्कि उससे बाहर निकलने की काबिलियत है। यह अपने दर्द को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत का जरिया बनाने की काबिलियत है। यह वहाँ रोशनी बनना है जहाँ पूरा अंधेरा लगता है, और घावों के बावजूद खुद रोशनी बनना है। श्रोता और रविवार्य कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी सुन रहे थे, जिसको वैटिकन न्यूज यूक्रेन से लिया गया है।
1: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की गोद, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश जाना तो आम बात हो गई है। कोई विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है, तो कोई तीर्थाटन के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाता है, तो कोई शरणार्थी बनकर विदेशों में पनाह ले लेता है। बहुधा लोग नौकरी के लिए अपना प्यारा देश छोड़कर विदेशों की पनाह लेते हैं और वहाँ के तौर तरीकों, भाषा और वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। उन्हें रुपयों की कोई कमी तो नहीं होती, पर अपने दोस्त यारों की कमी उन्हें जरूर खलती होगी। दूसरी ओर घर पर बैठे बूढ़े माँ बाप उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं और पल पल उनके लौटने की बाट जोहते हैं। हाँ, अगर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखें तो इस व्यथा को कम किया जा सकता है। विशेषकर प्रवासी अगर बूढ़े माँ बाप के लिए अपने व्यस्त समय से चंद लम्हे निकाल कर उनका हालचाल पूछ लें, वीडियो कॉल कर लें, तो यह बूढ़े माँ बाप के लिए सोने चांदी से बढ़कर मूल्यवान उपहार होगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका, विशेषकर प्रवासियों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका माँ की गोद।
2: ओफो छुटकू, तुम भी ना, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अभी तो साफ करके सुलाया था और अब फिर नैपी गंदी कर रखी है।
3: क्या बात है विनया, क्यों हमारे नन्हे से राजकुमार पर गुस्सा कर रही हो? आ जाओ बेटे, नानी की गोद में आ जाओ। ये मम्मी बड़ा गुस्सा करती है ना आप पर?
2: हाँ मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी छुट्टू का ध्यान नहीं रखती है। सारे दर्द और तकलीफें भी मम्मी ही सहन करती है, फिर भी मम्मी ही सबसे खराब है। ऐसा क्यों है माँ?
3: अरे विनया बेटे, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, अब ये इतना नन्हा सा बच्चा हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर है। ऐसे में तुम ही इसे तकलीफ मान लोगी तो ये बेचारा क्या करेगा?
2: काहे का बेचारा, इसकी नानी नहीं है क्या इसके पास?
3: हाँ भाई, नानी तो है, लेकिन कितने दिनों तक? आपको आगे अपने पापा के पास, दादा दादी के पास नहीं जाना है क्या? मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। विनया तू बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम गोल मटोल गोरी नारी, एकदम गुल गोथनी सी।
2: और विश्व भैया कैसे थे माँ?
3: विश्व, वो तो जैसे मेरा विश्व ही था, मेरा पहला बेटा, मुझे माँ की पदवी देने वाला। कितने सपने देखे थे मैंने विश्व को लेकर।
2: अब छोड़ो भी ना माँ, विश्व भैया अपना भविष्य बनाने के लिए ही तो देश छोड़कर गए हैं, कोई यूं ही तो नहीं जाता अपनों को छोड़कर, और वहां से पैसे भी तो भेजते हैं आपके लिए।
3: पैसों से अपनी ममता खरीदी जा सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा को और मुझे ये घर काटने को दौड़ता है, कितने अरमानों से ये इतना बड़ा दो मंजिला मकान बनवाया था, कभी बेटा बहू और बेटी दामाद एक साथ आ जाएं, तब भी सभी के लिए ढेर सारी जगह रहे, हम हमारे नाती पोतों को खिलाया करें, और
2: माँ माँ संभालो अपने आप को माँ, देखो विश्व भैया ना सही, मैं तो हूं ना आपके साथ, क्या मेरा होना काफी नहीं है माँ?
3: ओह मैं भी कैसी माँ हूँ, महीने भर का बच्चा है तेरा और तेरे सामने क्या दुखड़ा लेकर बैठ गई। चल, इसकी नाइन आ गई होगी, जल्दी से तैयार करके इसे बाहर दे दे और थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। कल रात भर भी ये रो रो कर जागता रहा था ना?
2: हाँ माँ, नींद तो बहुत आ रही है।
3: चलो आ जाओ राजकुमार, हमारे पास आ जाओ। अरे वहाँ बाहर कौन खड़ा है, कौन है वहाँ?
4: माँ जी, मैं सोनू।
3: अरे सोनू, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ। और हरिराम माली कैसे हैं?
4: अच्छे हैं माँ जी। वो माँ जी मैं,
3: हाँ बोलो सोनू।
4: माँ जी, ये माँ ने मिठाइयाँ भिजवाई हैं और ये विनया दीदी के छोटे राजा के लिए झबले।
3: अरे इसकी क्या ज़रूरत थी सोनू, और माँ ने भिजवाए हैं? तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, तुम्हें तो कहा था पिछले 2 महीने से बिस्तर पर है।
4: हाँ माँ जी, वो बड़े भैया फॉरेन चले गए थे ना फिटर बनकर, माँ को लगता था कि आएंगे ही नहीं, 2 साल हो गए थे उनको। वो बॉन्ड भरवा लेते हैं ना वहाँ, इसलिए नहीं आ पा रहे थे।
3: तो अब आ गए तुम्हारे भैया?
4: हाँ माँ जी, आ गए भैया और अब जाएंगे भी नहीं वापस, इसी वास्ते तो माँ उठकर खड़ी हो गई फौरन।
3: अरे वाह, बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी माँ सोनू, और एक मैं हूँ। खैर अच्छा बैठो, ये लो विनया दीदी के छोटे राजा को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ। और चाय तो चलती है ना तुम्हें?
4: हाँ जी, ज्यादा चीनी वाली।
3: बैठो, मैं अभी लाती हूँ।
2: अरे ये माँ सिसकती हुई रसोई घर की ओर क्यों दौड़ पड़ी, चुटकू भी नहीं है हाथ में। माँ माँ, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? जरूर छुटकू ने तकलीफ दी होगी, वो ऐसा ही है, जब देखो तब सताता रहता है। आपको पैरों में दर्द है ना, और मैं जानती हूँ उसे गोदी में रहकर घूमना अच्छा लग रहा होगा, बढ़ गया ना आपके पैरों का दर्द, ये छुटकू भी ना।
3: अरे नहीं विनया, नहीं, उस नन्हे राजकुमार को कुछ मत कहो, वो तो बेचारा फरिश्ता है मेरा, कोई तकलीफ नहीं दी उसने मुझे, खेल रहा है बाहर। अब वो हरिराम माली का बेटा सोनू आया है ना, उसी के पास है।
2: सोनू आया है? अरे वाह, लेकिन माँ आप अभी क्यों रो रही थी?
3: बस ऐसे ही।
2: नहीं माँ, बोलो तो क्या हुआ है?
3: विनया, हरिराम माली का बड़ा बेटा भी 2 साल पहले विदेश गया था, कोई खोज खबर नहीं ली उसने अपने माता पिता की, उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। आज सोनू आया है, कह रहा है उसका भैया लौट आया। विनया विनया, कितनी खुश होगी ना उसकी माँ आज, उसे तो सारा संसार मिल गया होगा।
2: माँ तुम क्यों इस बात को मन से लगाए बैठी हो, विदेश जाने से क्या विश्व भैया पराए हो गए हैं?
3: मैं नहीं जानती विनया, इस हालत के लिए दोषी भी तो मैं ही हूं ना।
2: ये क्या कह रही हो माँ?
3: हाँ विनया, तुम्हारे मामा जी कॉलेज पढ़कर ही विदेश जा बसे थे, जब मेरी शादी हुई तब उसमें भी नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा सोना और जवाहरात भेजे थे, मुझे तो यही लगता था कि विदेश जाने वाला इंसान बड़ा सुखी होता है, वो इतना सारा पैसा जो कमा लेता है। मैंने भी मेरी माँ को ऐसे ही आंसू बहाते देखा था, मैं भी उनसे यही कहती थी कि माँ बेटा पैसे तो भेजता है ना, मामा जी की बातें बताते हुए ही मैंने विश्व को बड़ा किया, उसके सामने उन्हीं का आदर्श रखा, और मेरा बेटा मेरी बात मानकर चला गया। चला
2: माँ, माँ ये आप क्या कह रहे हो?
3: विनया विनया, मुझसे एक वादा कर।
2: बोलो माँ।
3: विनया, हम अपने छोटे राजकुमार को विदेश के सपने नहीं दिखाएंगे, हम उसे अपने देश का सच बताएंगे। तुम उसे मेरी पीड़ा बताना विनया, तुम उसे ये बताना कि रिश्ते क्या होते हैं, हम उसे खूब पैसे वाला नहीं, खूब अच्छे संबंध निभाने वाला बनाएंगे, शायद तभी वो अपनी माँ के साथ अपनी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को जान पाएगा। मेरी बात मानोगी ना विनया?
2: हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी माँ, तुम्हारा नाती अपने देश में ही रहेगा, अपनी माँ के पास हमेशा।
1: माँ की गोद। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार ये कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शहीद सैनिक के नाम के पीछे सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके जीवन, विश्वास, परिवार और प्यार की कहानी भी है, जो हमेशा रह जाती है। एक मानवता की कहानी, एक साहस एवं आशा की कहानी। यह यूक्रेनी सैनिक रोमन कोमलिको की मां विक्टोरिया कोमलिको की गवाही है। रोमन कोमलिको 16 मार्च 2022 को मारियोपोल की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जब रोमन की मौत हुई तो वह सिर्फ 20 साल का था। 20 साल की उम्र कम लगती है, लेकिन एक जागरूक इंसान बनने, विकसित होने और जीवन को गहराई से समझने के लिए उम्र सबसे जरूरी चीज नहीं होती। आप 20 साल की उम्र में भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व इंसान बन सकते हैं। सिद्धांत और विचार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब रोमन 2 साल का था तो एक दिन वह अपनी माँ के साथ कमरे में खेल रहा था। माँ किचन गए, रास्ते में शीशे पर खुद को देखा और सोचा, जब मेरा बेटा 20 साल का होगा तो मैं कैसी होंगी? अगर तब उससे पूरी सच्चाई मालूम होती कि क्या होने वाला है तो उसका बुरा हाल होता। लेकिन आज वह अपने बेटे को धन्यवाद देती है, जिसने उसे सिखाया कि इज्जत, सम्मान, सिद्धांत और विश्वास क्या होते हैं। ये वे चीजें हैं जो हमें असली इंसान बनाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुनिया सिर्फ मैं में बंद नहीं है। हर किसी को खुद के लिए जवाब देना होगा, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह का नागरिक हूँ, मैंने लोगों के लिए क्या किया है और मेरे कामों का आसपास रहने वालों पर क्या असर पड़ता है। यूक्रेन के लिए अपनी जान देने वाले हर एक व्यक्ति ने सबसे बढ़कर अपने परिवार, अपनी जमीन, अपने पुरखों और उन सभी चीज़ों की रक्षा की है जो उन्हें प्यारी थी। इसलिए विक्टोरिया के लिए हर शहीद सैनिक उसके बेटे के समान है और रोमन की तरह वे सभी को सम्मान एवं कृतज्ञता के साथ याद रखती हैं। उन्हें पता है कि वे यही चाहेंगे और कहेंगे, माँ यही सही है। हीरो की माँ हर सैनिक की माँ होती है। उनके कारनामे को जानकर और उनकी याद को संभालकर वह समझती है कि वह हर योद्धा की माँ है। विक्टोरिया अपने बेटे के बारे बताते हुए कहती हैं, सैनिक की सेवा में आने से पहले मेरे बेटे को इतिहास में बहुत दिलचस्पी थी। उसे दुनिया के इतिहास और यूक्रेन के इतिहास दोनों में बहुत रुचि थी। वह बहुत चिंतन करता था। 9वीं क्लास में उसने मुझसे कहा कि वह कॉलेज जाएगा, लेकिन पहले वह अपने देश की रक्षा करेगा। उसने इसके लिए खुद को आध्यात्मिक एवं शारीरिक रूप से तैयार किया। वह अक्सर कहा करता था, माँ हमारे देश में युद्ध जारी है, पर लोग इतने चैन से क्यों रहते हैं? उसे इस बात से दुख होता था कि 2014 से चल रहा युद्ध कई लोगों के लिए आम बात हो गई थी। 11वीं क्लास के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन सैनिक दल अजोव ब्रिगेड के लिए चयन में भाग लिया। विक्टोरिया मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि वह पास ना हो। वास्तव में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जंग के बीच हो। 20 उम्मीदवारों से सिर्फ 2 ही टेस्ट पास कर पाए। गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मेडिकल टेस्ट के बाद उसे तुरंत मारियोपोल में सेवा के लिए भेज दिया गया। उस समय मारियोपोल में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कभी कभी वह एक हफ्ते के लिए गायब हो जाता। एक बार जब उसकी माँ बहुत घबरा गई तो उसने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर हमले के लगभग 1 महीने पहले वह डोनवास जहाज पर था और टोही मिशन में शामिल था। जब उसे अजोव ब्रिगेड के लिए चुना गया तो घर में इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसके लिए एक माँ के रूप में सबसे जरूरी बात यह थी कि उसका बेटा जिंदा रहे, खुश रहे और उसके नज़दीक रहे। लेकिन रोमन ने कहा कि सैनिक में भर्ती होना उसकी मर्जी है और यह उसके लिए बहुत जरूरी है। माँ ने भी अपनी आवाज़ ऊंची की। इस पर रोमन ने माँ की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम मेरी माँ हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी मर्जी कैसे नहीं समझ सकती। और विक्टोरिया को उसकी बात मानने पड़े। जब वह मारियोपोल में सेवा करने गया तो माँ उदास रहने लगी। वह लगातार चिंता करती थी और जब 2022 में हमला शुरू हुआ तो वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पांव छीन लिए गए हों। लेकिन रोमन ने हौसला देते हुए कहा, माँ, हमारा समय आ गया है। वृहद स्तर पर हमला होने से पहले उससे नए साल की छुट्टियों में जाना था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। पर वह बिना इजाजत लिए 21 घंटे गाड़ी चलाकर घर आया और अपनी माँ एवं बहन से आखिरी बार मुलाकात की। घर में रहते समय जब वह एक दोस्त के साथ बाहर जाने वाला था तभी उसकी नानी आई। नानी ने उसे देखा और कहा, रोमचिक, तुम ठीक वहीं हो जहाँ मौत का खतरा है। तब वह अपनी माँ के पास आया और बोला, तुम हीरो की माँ बनोगी। और जब वह वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो उसने कहा, माँ, तुम समझती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। मारियोपोल के उस भयंकर सड़क युद्ध के दौरान रोमन शहीद हो गया। माँ को इसकी खबर मिली और वह उसके शव को 7 महीने तक ढूंढती रही। रूसी सैनिकों ने मारियोपोल से मरे लोगों के शव को वापस नहीं किया था। जब जून में वे वापस चले गए तब उनके बेटे का शव मिला। उसने उसे एक योद्धा की तरह दफनाया, बेटे से नहीं रोने का वादा किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माँ रोए। जब हम ऐसे लोगों के मिशन के बारे में बात करते हैं तो हम हथियारों या ताकत के बारे बात नहीं करते। सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान, इज्जत और अपने अधिकारों और अपने ज़मीन की रक्षा करने की क्षमता। माँ कहती हैं, मेरा बेटा दूसरों का मुल्क नहीं गया और किसी से कुछ नहीं लिया, उसने अपने लोगों का बचाव किया। लड़ाई के दौरान जब मारियोपोल को समुद्र से, आकाश से और तोपों से तबाह कर दिया गया तब इस पूरे समय में वह सिर्फ 2 बार बात कर पाई। जब उसने फ़ोन किया, माँ चिल्लाई, रोमचिक, रोमचिक, और उसने जवाब दिया, माँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ मुझे होना चाहिए। लेकिन माँ, प्लीज़ उन लोगों की मदद करना जो मारियोपोल से लौट रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वे यहाँ किस दौर से गुजर रहे हैं। रोमन को आम लोगों से हमदर्दी थी। मारियोपोल के लोग अपने परिवारों के साथ 50 से 60 दिनों तक उस नरक से बचे रहे। उन्होंने वह लाइन पार कर ली जिसके आगे मौत और तकलीफें जरूर हैं, लेकिन वे असली इंसान बने रहे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, हमदर्दी रखी और एक दूसरे का ख्याल रखा। यही वे चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को सच्चा इंसान बनाते हैं। इस तरह विक्टोरिया जानती हैं कि आत्मा की ताकत जख्मों का ना होना नहीं है बल्कि उससे बाहर निकलने की काबिलियत है। यह अपने दर्द को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत का जरिया बनाने की काबिलियत है। यह वहाँ रोशनी बनना है जहाँ पूरा अंधेरा लगता है, और घावों के बावजूद खुद रोशनी बनना है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन के शहीदों की माताओं की कहानी सुन रहे थे जिसको वैटिकन न्यूज यूक्रेन से लिया गया है।
1: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की गोद, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश जाना तो आम बात हो गई है। कोई विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है तो कोई तीर्थाटन के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाता है तो कोई शरणार्थी बनकर विदेशों में पनाह ले लेता है। बहुधा लोग नौकरी के लिए अपना प्यारा देश छोड़कर विदेशों की पनाह लेते हैं और वहाँ के तौर तरीकों, भाषा और वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। उन्हें रुपयों की कोई कमी तो नहीं होती, पर अपने दोस्त यारों की कमी उन्हें जरूर खलती होगी। दूसरी ओर घर पर बैठे बूढ़े माँ बाप उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं और पल पल उनके लौटने की बाट जोहते हैं। हाँ, अगर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखें तो इस व्यथा को कम किया जा सकता है। विशेषकर प्रवासी अगर बूढ़े माँ बाप के लिए अपने व्यस्त समय से चंद लम्हे निकालकर उनका हालचाल पूछ लें, वीडियो कॉल कर लें, तो यह बूढ़े माँ बाप के लिए सोने चांदी से बढ़कर मूल्यवान उपहार होगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका, विशेषकर प्रवासियों का मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका माँ की गोद।
2: ओ छुटकू तुम भी ना, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अभी तो साफ करके सुलाया था और अब फिर नैपी गंदी कर रखी है।
3: क्या बात है विनया, क्यों हमारे नन्हे से राजकुमार पर गुस्सा कर रही हो? आ जाओ बेटे, नानी की गोद में आ जाओ। ये मम्मी बड़ा गुस्सा करती है ना आप पर?
2: हाँ मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी छुट्टू का ध्यान नहीं रखती है। सारे दर्द और तकलीफें भी मम्मी ही सहन करती है, फिर भी मम्मी ही सबसे खराब है। ऐसा क्यों है माँ?
3: अरे विनया बेटे, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, अब ये इतना नन्हा सा बच्चा हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर ही तो निर्भर है। ऐसे में तुम ही इसे तकलीफ मान लोगी तो ये बेचारा क्या करेगा?
2: काहे का बेचारा, इसकी नानी नहीं है क्या इसके पास?
3: हाँ भाई, नानी तो है, लेकिन कितने दिनों तक? आपको आगे अपने पापा के पास, दादा दादी के पास नहीं जाना है क्या? मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। विनया तू बिल्कुल ऐसी ही थी, एकदम गोल मटोल गोरी नारी, एकदम गुल गोथनी सी।
2: और विश्व भैया कैसे थे माँ?
3: विश्व, वो तो जैसे मेरा विश्व ही था, मेरा पहला बेटा, मुझे माँ की पदवी देने वाला। कितने सपने देखे थे मैंने विश्व को लेकर।
2: अब छोड़ो भी ना माँ, विश्व भैया अपना भविष्य बनाने के लिए ही तो देश छोड़कर गए हैं, कोई यूं ही तो नहीं जाता अपनों को छोड़कर, और वहां से पैसे भी तो भेजते हैं आपके लिए।
3: पैसों से अपनी ममता खरीदी जा सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा को और मुझे ये घर काटने को दौड़ता है। कितने अरमानों से ये इतना बड़ा 2 मंजिला मकान बनवाया था, कभी बेटा बहू और बेटी दामाद एक साथ आ जाएं, तब भी सभी के लिए ढेर सारी जगह रहे, हम हमारे नाती पोतों को खिलाया करें और...
2: माँ माँ संभालो अपने आप को माँ, देखो विश्व भैया ना सही, मैं तो हूं ना आपके साथ, क्या मेरा होना काफी नहीं है माँ?
3: ओह मैं भी कैसी माँ हूँ, महीने भर का बच्चा है तेरा और तेरे सामने क्या दुखड़ा लेकर बैठ गई। चल इसकी नाइन आ गई होगी, जल्दी से तैयार करके इसे बाहर दे दे और थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, कल रात भर भी ये रो रो कर जागता रहा था ना?
2: हाँ माँ नींद तो बहुत आ रही है।
3: चलो आ जाओ राजकुमार हमारे पास आ जाओ। अरे वहाँ बाहर कौन खड़ा है, कौन है वहाँ?
4: माँ जी मैं सोनू।
3: अरे सोनू क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और हरिराम माली कैसे हैं?
4: अच्छे हैं माँ जी, वो माँ जी मैं।
3: हाँ बोलो सोनू।
4: माँ जी ये माँ ने मिठाइयाँ भिजवाई हैं और ये विनया दीदी के छोटे राजा के लिए झबले।
3: अरे इसकी क्या ज़रूरत थी सोनू, और माँ ने भिजवाए हैं? तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, तुम्हें नहीं तो कहा था पिछले 2 महीने से बिस्तर पर है?
4: हाँ माँ जी, वो बड़े भैया फॉरेन चले गए थे ना फिटर बनकर, माँ को लगता था कि आएंगे ही नहीं, 2 साल हो गए थे उनको, वो बॉन्ड भरवा लेते हैं ना वहाँ, इसलिए नहीं आ पा रहे थे।
3: तो अब आ गए तुम्हारे भैया?
4: हाँ माँ जी आ गए भैया, और अब जाएंगे भी नहीं वापस, इसी वास्ते तो माँ उठकर खड़ी हो गई फौरन।
3: अरे वाह बड़ी भाग्यशाली है तुम्हारी माँ सोनू, और एक मैं हूँ। खैर अच्छा बैठो, ये लो विनया दीदी के छोटे राजा को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ, और चाय तो चलती है ना तुम्हें?
4: हाँ जी ज्यादा चीनी वाली।
3: हाँ बैठो मैं अभी लाती हूँ।
2: अरे ये माँ सिसकती हुई रसोई घर की ओर क्यों दौड़ पड़ी, छुटकू भी नहीं है हाथ में। माँ माँ क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? जरूर छुटकू ने तकलीफ दी होगी, वो ऐसा ही है, जब देखो तब सताता रहता है। आपको पैरों में दर्द है ना, और मैं जानती हूँ उसे गोदी में रहकर घूमना अच्छा लग रहा होगा, बढ़ गया ना आपके पैरों का दर्द, ये छुटकू भी ना।
3: अरे नहीं विनया, नहीं, उस नन्हे राजकुमार को कुछ मत कहो। वो तो बेचारा फरिश्ता है मेरा, कोई तकलीफ नहीं दी उसने मुझे, खेल रहा है बाहर। अब वो हरिराम माली का बेटा सोनू आया है ना, उसी के पास है।
2: सोनू आया है? अरे वाह, लेकिन माँ आप अभी क्यों रो रही थी?
3: बस ऐसे ही।
2: नहीं माँ, बोलो तो क्या हुआ है?
3: विनया, हरिराम माली का बड़ा बेटा भी 2 साल पहले विदेश गया था। कोई खोज खबर नहीं ली उसने अपने माता पिता की। उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। आज सोनू आया है, कह रहा है उसका भैया लौट आया। विनया, विनया कितनी खुश होगी ना उसकी माँ आज, उसे तो सारा संसार मिल गया होगा।
2: माँ, तुम क्यों इस बात को मन से लगाए बैठी हो? विदेश जाने से क्या विश्व भैया पराए हो गए हैं?
3: मैं नहीं जानती विनया, इस हालत के लिए दोषी भी तो मैं ही हूं ना।
2: ये क्या कह रही हो माँ?
3: हाँ विनया, तुम्हारे मामा जी कॉलेज पढ़कर ही विदेश जा बसे थे। जब मेरी शादी हुई तब उसमें भी नहीं आ सके। हाँ, उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा सोना और जवाहरात भेजे थे। मुझे तो यही लगता था कि विदेश जाने वाला इंसान बड़ा सुखी होता है, वो इतना सारा पैसा जो कमा लेता है। मैंने भी मेरी माँ को ऐसे ही आंसू बहाते देखा था। मैं भी उनसे यही कहती थी कि माँ, बेटा पैसे तो भेजता है ना। मामा जी की बातें बताते हुए ही मैंने विश्व को बड़ा किया, उसके सामने उन्हीं का आदर्श रखा, और मेरा बेटा मेरी बात मानकर चला गया।
2: माँ, ये आप क्या कह रहे हो?
3: विनया, विनया मुझसे एक वादा कर।
2: बोलो माँ।
3: विनया, हम अपने छोटे राजकुमार को विदेश के सपने नहीं दिखाएंगे, हम उसे अपने देश का सच बताएंगे। तुम उसे मेरी पीड़ा बताना विनया, तुम उसे ये बताना कि रिश्ते क्या होते हैं। हम उसे खूब पैसे वाला नहीं, खूब अच्छे संबंध निभाने वाला बनाएंगे। शायद तभी वो अपनी माँ के साथ अपनी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को जान पाएगा। मेरी बात मानोगी ना विनया?
2: हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी माँ। तुम्हारा नाती अपने देश में ही रहेगा, अपनी माँ के पास हमेशा।
1: माँ की गोद। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।